हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सू प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पहाट कीरत की,

देवी अहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसह कुरसह चटिया तो जिठे सच्चे पात साह

बोले सो निहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की महान कृपा बख्शिश का सदका आओ हुण सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो श्री अमृतसर साहिब तो साढ़े पास पहुँचे हुए हैं अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रवेल सिंह जी। उन्होंने पासों गुरु के पावन इतिहास की कथा विचार सरवण करांगे जी। साध संगत जी, वह भली प्रकार आप जी नूं पता ही है कि सिंह सभा गुरद्वारा साहिब तो अगे मोर्चा लग्या होया है, क्योंकि सतगुरु जी दे अदब सत्कार वास्ते समूह साध संगत बड़े प्यार दे सहत कम्मा कारां तो वेले हो के शाम दे समय उत्थे हाजरियां भरदे हन। आप सिख संगतां दे चरणां विच वी बेनती है कि साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है सुत्तिआं होइआं नूं जगाउण वास्ते। सतगुरु जी आप ही ऐसे कारण बना दिंदे हन, जदों गुप्त रूप दे विच कोई सतगुरु जी का सत्कार घट करदा होवे ते फिर सतगुरु जी उन्हां दी जिहड़ी कीती होई बेअदबी है ना, वह प्रगट रूप दे विच सिख संगतां नूं भावना वाले सिखां नूं दिखा दिंदे ने। फिर गुरु के सिख एकत्र हो के जदों बेनती करदे ते बेनती ना मन्नी जावे, कीती भुल दी गलती ना मन्नी जावे, ते फिर उन्हां दा विरोध सिख संगतां दे मनां दे विच अपने आप ही आ जांदा है। वैसे तां गुरु की सेवा बड़ी महान है, वड्डी है, सेवा करद्यां करद्यां भुल हो ही जांदी है, पर जिहड़ा भुल मन लवे झुक जावे, गलत कीती होई गलती मन लवे गुरु के पंथ दे विच उहदे वास्ते बहुत ज़्यादा वड्डा सत्कार, ते जिहड़ा ना मन्ने फिर उहनूं पता है तुहानूं कि उहदी हालत कैसी हुंदी। आओ जी सिंह साहिब ज्ञानी रवेल सिंह जी उहनां दे पासों गुरु का पावन पवित्र इतिहास सरवण करके लाहे प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पतत पावन भगत वत्सल जुगो जुग अटल चवर तख दे मालक हालत पल दे रखक गुरु गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद अंदर विराजमान अति सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे धन तद योग हो जो संध्या के सुंदर दवाना विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र गोद अंदर बैठ के अलाही बाणी रब्बी बाणी सो दरारा रास साहब की पाठ सरवण किए हैं। उपरंत गुरु घर के कीर्तनियां पासों आप जी ने रब्बी बाणी अलाही बाणी के शब्द कीर्तन सरवण करके अपने जीवन के स्वासां नूं सफल बनाया है। सतगुरां ने महान बख्शिश की है जो सानू संसार धंधियां विचों समा कढ के सतगुरों के पावन पवित्र चरणों च बैठ के सतगुरों का पावन पवित्र उपदेश ग्रहण करन दा सुभाग समा सतगुरां ने बख्शिश किया है। जिथे आप रोजाना की तरह हाजरी भरते हो उथे अज का पावन पवित्र दिहाड़ा जो धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी के पावन पवित्र दर दे श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह दर दे अन्न सेवक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी भाई सालो जी का अज जन्म दिहाड़ा है। इस तरह ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी का सचखंड गवन दिवस है। ये दोनों पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सतगुरां दे अनन सेवक जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी ने 113 साल लगातार गुरु घर की सेवा की है अनन सेवा की। फिर तो भाई सालो जी ने श्री गुरु रामदास पातशाह जी तो लैके धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह की शरण के बेअंत सेवावां कीतियां हन। ऐसे सतपुरशां दा जिहड़ा संसार ते आउणा जाणा इह साडे वर्गू नहीं है। जितना आपां संसारक जीव संसार ते जन्म लै के आए हाँ फिर मौत दे रहे संसार तों चले जाणा। साडा आउणा ते ऐसे ब्रह्म ज्ञानी दा आउणा जमीन समान तों ज़्यादा फर्क है, क्योंकि असीं संसार ते आए खा पी के सौ के अपनी जिहड़ी उम्र बतीत की है रैण गवाई सोए के दिवस गवाए खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। असी अपना जिहड़ा मनुखा जीवन है ये व्यर्थ गवा रहे हैं, लेकिन जिहड़े ऐसे सतपुरश ब्रह्म ज्ञानी तत् बेते साडे वर्गों संसार ते नहीं आए। वह परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु दे कल्ले होए आए हाँ तो की करन वास्ते आए हैं। तो सतगुरु की बाणी का पावन कथन जन्म मरण दहू मैं नाही जन पर उपकारी आए। ऐसे सतपुरश तत् पेते ब्रह्म ज्ञानी साडे वर्गों संसार ते नहीं आए, जन्म मरण च नहीं आते। वो केवल तो केवल परोपकार करन वास्ते आए हैं। सतगुरु की बाणी का पावन कथन साख तो मरे संत सब जीव है। साबत पुरश जिहड़ा गुरु तो बेमुख हुंदा है जिहड़ा कदी परमात्मा अकाल पुरश का नाम सिमर नहीं करता सेवा नहीं करता है असल सतगुरु कहिंदे ओह जे जींदा होया ही मरियां दे बराबर है। साबत मरे संत सब जीव जिहड़े संत पुरश है वह तो सदा ही जींदे हन, क्योंकि शरीर जिहड़ा ये तो नासवंत शरीर तो एक साधन है। उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी करके सेवा करके सिमन करके उस परमात्मा के मिलाप का एक साधन है। तो असी इस शरीर में केवल खाण पीन विच ही सीमित रख्या है, इस करके साढ़े तो अं जींदे हुए मरियां के बराबर हाँ। पर जिहड़े सतपुरश आ ब्रह्म ज्ञानी तत् बेते है वह भाई संसार ते आउंदे परोपकार करन वास्ते परोपकार की करते हैं जी दान दे भगती लाएन हरसो लैन मिलाए। और जीवन दे दान देने वाली परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की प्रेमा भगती सिमरना जोड़ते हैं। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੋਰਾ ਚਿੰਤਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਹਨ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਐਸੇ ਤੱਤ ਬੇਤੇ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road.

मैं कोई न जाने तुम्हारा ऊचे ते सागल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी तुम्हारी गात मित तुम्ही नानक दास तुदे आ गया यार दास

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तिह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखा हो सरनाई मैं मूरख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे

मन हरलिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजुलि पुन वड्डा हे कर डंडावत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साग न जानिया तिन अंतर हम मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चलहे चुभै दुख पावहे जमकाल सहे सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुशोभ खंड ब्रह्मंडा है।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखां नूं पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकदा है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरां दे ही हुंदे ने। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ। प्रथम श्रेणी, पहली श्रेणी, इसनों वो इस तरह बयान कर देने। कुछ पूर्ण पुरुख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं है, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लेने वास्ते तैयार हो गया। दूजा चौला, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तों मन वासना वस हो के बार बार शरीर धारण करदा रहा, चोला बदलदा रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी है तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते हंकार भी मर जाएगा।

0: मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरता, शरीर मरता है, अहंकार नहीं मरता। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होती। शरीर बिरध हो जाता है, लोभ बिरध नहीं आता। लोभ सदा जवान रहता है, अहंकार सदा जवान रहता है, विकार सदा जवान रहता है, वासना सदा जवान रहती है। अगर शरीर की मौत ही वासना की मौत आती, मैं फिर दोहरावां, इस सत्संग की लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरध हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा होंदा ही नहीं। शरीर ते बिरध हो गया, वासना ते बिरध होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरध हो गया, अहंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा देगी, अगला जन्म करा देगी। शरीर मर भी जाता है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरता। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए आसा दीवार के श्लोक का इंज खुलासा करते ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज न समझदा कि शरीर मर जाता, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता, लोभ नहीं मरता। शरीर मर जाता, अहंकार नहीं मरता। तन की मौत हो जाती है, मन की नहीं आती। वो फिर दूसरा तन धारण कर लेता। वासना मर गई है, तन की मौत नहीं। इनू कहते जीवन मुक्त। हंकार ते मर गया है, तन अजय जिंदा है। इनू कहते जीवदियां जी मुक्त है, मुक्त। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए। बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार का बंधन आंदा, लोभ का बंधन आंदा, वासना का बंधन आंदा, सब तोड़ दिते ने, सब टुट गए। तन की मौत ते नहीं हुई, हंकार की मौत हो गई। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया है। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेड़े उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरती, उंज ते लोभ नहीं मरता, सिर्फ तन मर जाता है। प्रकृति एक दिन तन नूं बुढ़ा कर देंदी है, मन नूं बिरध नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नूं खत्म कर देंदी है, मन नूं खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा। कई इस तरह सोचते रहिंदे ने, जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे। बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान होवेगी। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी। रोज रोज तन बुढ़ा होंदा है, रोज रोज लोग जवान हो रहा है, बलवान हो रहा है, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है, निर्बल हो रहा है। रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहा है, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है। तन की मौत वासना की मौत नहीं है, तन की मौत अहंकार की मौत नहीं है, तन की मौत लोभ की मौत नहीं है। बच्चे का तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, अहंकार छोटा है। जवान है, अहंकार जवान हो गया, लोभ जवान हो गया, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि रोज रोज वासना शक्तिशाली होती है, रोज रोज अहंकार की ताकत वधदी है, रोज रोज लोभ की ताकत वधदी है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा, एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही। ये भी मैं रोज रोज उम्र दे वधदियां लोभ बलवान होंदा, अहंकार बलवान होंदा, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का, धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं, कोई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरध हो गई होगी या मर गई होगी, अहंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख है, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी अहंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े च होता है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनैतिक लोग ने ना 97% बुढ़े ने, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरध ने। कई तो ऐसे ने, चार बंदे उन्होंने पकड़ के कुर्सी ते बिठाते ने, चार लांदे ने बेचारे, आप बैठ भी नहीं सकते, हाथ कंबदे ने, पैर कंबदे ने, सिर कंबदा है, लेकिन हुक्मरानी दी पकड़ बड़ी प्रबल, हुक्म करन दी चाहत बड़ी प्रबल, अहंकार बड़ा प्रबल। समाजिक चौधरी, राजनैतिक चौधरी 97% बुढ़े होंगे। शरीर दे वधदियां, उम्र दे वधदियां अहंकार वध गया, लोभ वध गया, वासना वध गई है। इस वास्ते शरीर दी मौत कोई वासना दी मौत नहीं है, लोभ दी मौत नहीं है, अहंकार दी मौत नहीं, मन दी ए वासना फिर अगला जन्म करा दें। अवतार जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ, ये वासना वस हो के नहीं आउंदे, ये अहंकार वस हो के नहीं आउंदे, ये परोपकार वस हो के आउंदे। जन्म मरण दोहों में ना ही जन परोपकारी आए। इस वास्ते अवतारा नाल असी जो है ये लफ्ज जोड़ते हैं, प्रकाश उत्सव जन्म दिन नहीं, जमदे ने इंसान प्रकाशित होंदे ने परम पुरख गुरु पीर पैगंबर। क्यों वो वासना करके आए ही नहीं, फिर क्यों आ गए, मुक्त हो गए सन, क्यों आ गए? आन दा कारण परोपकार, जन परोपकारी आए। जगत नू जलदा होया वेख रहन, दुखत वेख रहन, तरस का तरस आ गया, इन्ना जगत जल रहा अहंकार दे च, तृष्णा दे च, वासना दे च, लोभ दे च, तरस वस आ गया, परोपकार की खातर आ गए ने। कुछ असी जाने है, जनाई है, कुछ साढ़े कोल है, वंडी है। रविंद्र नाथ टैगोर कहते ने, अवतारा ने जो वंडना चाहिया संसार ने लिया नहीं, ते आम संसारक मनुख जो छुपाना चाहते ने उस संसार ने खोण की कोशिश की। धन ते हर एक दा दूजा खोना चाहता है, धर्म परम पुरख वंडन भी आते, कोई लेना नहीं चाहता, नहीं लेना चाहता, मुफ्त च वंड देना। कबीर ते कहन मुफ्त की लुट पई है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जिन्ना लुटना ही लुट ले। किसे दा धन लुटिए लुटेरे कहलावांगे, किसे दा धन लुटिए पकड़े जावांगे, जेल पौगांगे सजा मिलेगी। पर परमात्मा दा खजाना उदे नाम दा खजाना लुटिए, परमात्मा दे दरबार विच ही वड्डे तो वड्डा सिंघासन मिलेगा, सन्मान मिलेगा। राम नाम की लूट है, जितना लुटना ही लुट ले, कोई रोकेगा नहीं। खजाना खुला पे है, सरेआम पे है, लुटेरे कोई नहीं, लुटन वाले कोई नहीं। जिहड़े लुट लैंदे ने उन्होंने ही संत कहिंदे ने, भगत कहिंदे ने, उन्होंने ही महापुरुष आख्या जांदा। खूब लुटे है उन्होंने, रज के लुटे है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये पहली श्रेणी अवतारी पुरुष परोपकार की खातर आ गए ने, वासना करके नहीं आए। हंकार इन्हों फिर जन्म नहीं दे रहा। हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए, हौ में एही बंधना फिर जो नहीं पाए। ये बार बार जन्मे ने हंकार करके नहीं, लोभ करके नहीं, वासना करके नहीं। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए, मरम को पाए। ये वासना करके नहीं आए, ये हंकार करके नहीं आए, ये लोभ करके नहीं आए, पर उपकार करके आ गए। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। मैं अर्ज करा, मन का एक बहुत छोटा जिहा भाग कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, पाठ सुनदा है, मन दे नौ हिस्से नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। चलो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल सुन लो तो फिर गल स्पष्ट हो जाएगी। बिरथा कहो कवन स्यो मन के, मैं मन की हालत किनू दसा, किसनों दसूं। बिरथा कहो कवन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दसहु दिस धावत, आसा लाग्यो तन की, हर वक्त धन दी आस। चाहे करोड़ा हो गए चाहे अरबा हो गए, आसा धन दी है धर्म दी नहीं है, आसा पदार्था दी है परमात्मा दी नहीं है, आसा ये चलती है। लोभ ग्रस्यो दसहु दिस धावत, आसा लाग्यो तन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सोचदा सी बहुता धन मिलेगा, बहुता सुख मिलेगा, जितना धन मिलेगा उतना ही दुख मिलेगा। चलो मैनू कहण देना ते माफी मैं पहले मंग लवां, कोई मनुख कितना दुखी है वेख लेना कितना धनवान है, बस जिन्ना धनवान है उतना ही दुखी है। बड़े बड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इस तरह के बंदे किधरे गुरुद्वारे भी आ जान, किथे प्रभु का चिंतन करते ने, अपनी चिंतावां च ही डुबे होंगे, उन्हों का मत्था ही दसता है, अपनिया चिंतावां च ही गर्क होंगे। बिरथा कहो कवन स्यो मन के, लोभ ग्रस्यो दसहु दिस धावत, आसा लाग्यो तन के, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, नै सुद राम भजन के, मानस जन्म अकारत खोत। एना कीमती जन, मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना से तन की। हरिदा जस गाते हरी हो जा, परमात्मा दे गुण गाते परमात्मा हो जा, क्यों नहीं करता। निकल जाए ना चिंतावां तो इस बोझ तो इस दुख तो इस संताप तो। इस तरह की विद्या ज्ञान शिक्षा देन वास्ते ये परोपकार वास्ते अवतारी पुरुष आ जाते हैं, वरना इन्हों आन की लोड़ नहीं तो मुक्त आते हैं। मुक्त पुरुष किधरे भी जा सकते हैं। रविदास कहने ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे महरम महल न को अटकावे। कोई अटक नहीं, कोई रोक नहीं। एक ते जीवन मुक्त जो मुक्त हो चुके ने, कोई रोक नहीं, किसे मंडल च जा सकते ने, किते भी जा सकते, भ्रमण कर सकते। एक उन्होंने भी कोई रुकावट नहीं आती जिन्हां कोले तन ते नहीं आता। तन के अंदर जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है जिन्हों इनरल बॉडी करके कहिंदे ने, संस्कारां दा मुजस्मा जिस विच मन है वो होंदा है, तन नहीं होंदा। एक तरीके की हवा होंदी है। यह तुसीं कथा सुनदे पए हो, यह पेट दे च जाएगी, खून दे च जाएगी, मास दे च जाएगी, हड्डियां च जाएगी, कतई नहीं सूक्ष्म शरीर दे जाएगी। अगर सुन रहे हो कीर्तन तुसीं सुनदे हो, दे नाल कोई पेट भर जाएगा। अगर पेट भर जाएगा तो फिर लंगर कानू चलाया, किस वास्ते चलाया? कीर्तन नाल नहीं पेट भरदा, पेट पाठ नाल पेट नहीं भरदा, कथा नाल पेट नहीं भरदा, जप तप नाल पेट नहीं भरदा, लंगर चलाना पैंदा, पंगत बनाई सतगुरु ने। एक कथा कीर्तन जप तप मन दी खुराक है, तन दी नहीं है। पर मन खांदा नहीं, इस वास्ते सतगुरु कहिंदे जे को खावे जे को भुनचे तिसका होयो उधार। कोई खावे ते सही है, नहीं खांदे। मैं फिर अर्ज करा, मन का एक छोटा जिहा भाग किधरे पाठ दे चाहुंदा, बाकी नहीं आता। मन का एक छोटा जिहा भाग गुरुद्वारे आता, बाकी नहीं आता। इस वास्ते कीर्तन कथा जप तप गुरबाणी मन तक जाती नहीं, मन विच प्रवेश नहीं करती। ते जे हुण भोजन की बुरकी तन विच गई नहीं तो खून कित्थों बनेगी, मास कित्थों बनेगी? गुरु का शब्द मन विच गया ही नहीं तो मुक्ति कित्थों नसीब होवेगी? बंधन किवें टुटणगे, आनंद किवें मिलेगा? शब्द मन तक नहीं जाता। ना जाण का एक कारण, भोजन की भुख तन नूं लगदी है, शब्द की भुख मन नूं नहीं है, नहीं है। नाम की भुख मन नूं नहीं है। खुशकिस्मत है वह मनुख जिन्हों नाम की भुख लग जाए। साचे नाम की लागे भूख, खुद भूखे खाए चलिए दुख। खैर मिल मुका माना। कुछ शरीर जो सूक्ष्म ने उन्होंने उत्ते तन का अस्थूल तन का बंधन नहीं आता। इस अस्थूल तन की अपनी सीमा है, सूक्ष्म की सीमा नहीं, किधरे भी जा सकता है। इस सूक्ष्म शरीर मुक्त आत्मावां कोल होंदे ने, मुक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर ने। परमात्मा दे च जी रहे ने, परमात्मा दे च विचर रहे ने, किधरे भी जान व्यापक है परमात्मा। किधरे किधरे फिर इस तन दे च आके जन्म ले लैंदे ने। वासना वस होके नहीं, परोपकार वस होके। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। ते मैं ये अर्ज करा, सूक्ष्म शरीर मुक्त शरीरों तो इलावा कुछ होर भी आते हैं, देवत्या दे, भूतां ते प्रेतां दे, उन्हां कोल भी ये तन का बंधन नहीं होवे आंदा, जिथे चान जा सकते हैं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ठीक है, सनातनी ऐसा कहते हैं जिथे रामायण की कथा होवे उत्थे हनुमान होंदा है। मैं कुछ ब्राह्मण वीरां नूं कथा वाचकां नूं कहिंज ना आख्या करो, अगर ये कहिंदे हो ते हनुमान मुक्त नहीं होया। अजे भी देवता, चलो देवता है पर भटक रहे, देवते भी भटकदे ने, भूत प्रेत भी भटकदे ने। इंज आखो जिवें हनुमान प्यार करदा सी राम नाल, हनुमान की तरह कोई प्यारियां रूहां उत्थे होंदियां ने जिथे रामायण की कथा होवे। पहले तो मैं उंज उपरों उपरों कहिंदा सी, पर हुण मैं दावे नाल कहिंदा जिथे सतसंग होवे उत्थे सूक्ष्म रूहां होंदियां ने, उत्थे गुरमुख रूहां होंदियां ने जो मुक्त नहीं होईआं। जैसे 100 मील की वाट होवे ते कोई 90 मील चले है ते शरीर का अंत हो गया, शरीर की उम्र इतनी सी, 10 मील की वाट ते रह गई, वो तो तय करनी है, ते उहदे वास्ते फिर जन्म लेना पएगा। ते जिहड़ा इतना चल चुका है वह हर मां दे राही जगत विच नहीं आना चाहता, हर पिता दे राही नहीं आना चाहता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। जिहड़ी देवते नूं जन्म दे देंदी है तिन धन जने दी माओ आए सफल, क्योंकि देवता पवित्र मन दा मालिक है, उहदे कोल मन है। चलो मैनूं इंज कहण देना, पशु कोल तन है विकसित मन नहीं है, देवते कोल सिर्फ मन है तन नहीं है, मनुख कोल तन भी है मन भी है। आप सारे सियाने बैठे बुनियादी गल नूं पकड़ना, पशु कोल तन है मनुख नालों बड़ा भारी विकसित तन है, हाथी कोल है घोड़े कोल है, पर विकासशील मन नहीं है, सिर्फ तन। देवते कोल सिर्फ मन है, मन है, ये तन नहीं है। मनुष्य कोल ये तन भी है मन भी है, मुक्ति मनुख दे राही मिलेगी, परमात्मा मनुख दे राही मिलेगा, ना भूत प्रेत नू ना देवते नू। इस वास्ते गुरबाणी कहिंदी इस देही को सिमरे देह, देवते भी कहिंदे ने देही मिले ते मुक्त होई है। 10 मील की जड़ी वाट रहिंदी है पूरी करिए, पर देवते वास्ते कोई देवी मां चाहिए। पहले चुनाव मां का, क्योंकि मां के गर्भ में उसने प्रवेश करना है। मां बाप की वासना, इसकी जन्म की वासना, ये तिना का संगम बन के इसका जन्म होगा। जैसे गुलाब का बूटा बंजर जमीन च नहीं पैदा होता, देवते नूं जन्म जनी खनी मां नहीं कर सकते, देवते नूं जन्म देण वास्ते कोई खास मां। इसनूं मिर्जा गालिब एक होर ढंग नाल बयान करता है, मुहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मैं फिर अर्ज करा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राजे हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। इस संगीत हर साज ते नहीं गाया जा सकता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। इस संबंध च गुरबाणी च बड़ा कुछ है, मैं इस वक्त इस पासे गया तो इसे पासे ही चला जावांगा, मूल गल रह जाएगी। पंडित दया राम जी गुजरात के एक चंगे भगत होए ने, वो कहिंदे ने प्रेम सोनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। ऐ मां ऐसा पुत्र पैदा कर प्रभु दा नाम सुने अश्कबार हो जाए, बिरही हिरदा रब वासे तड़प उठे रो उठे। रोंदे ने लोकी, कोई औलाद दी खातर रो रहा है, कोई कारोबार दी खातर रो रहा है, कोई परिवार दी खातर रो रहा है, कदी कदाई कोई मिलदा है रोंदा होया निरंकार दी खातर, कदी कदा। प्रेम सुनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। इस तरह का भगत पैदा कर, जे नहीं तो कह खग गैरण में भले लहू सो घाव चले अरधंगा, ऐसा सोर बेर पैदा कर। रणभूमि विच रोम रोम उसका जख्मी होवे, पिठ फिर भी ना दिखावे, अणख उसकी बनी रहे। ते जे ए भी नहीं ते विद दोए भूत जने जननी जन आओ सवे सुत कीट पतंगा, ते फिर कीड़े मकोड़िया नो जन्म देन नाल की होना, धरती का बोझ ही बनाएगी और की कहन देना। अजोकी औलाद जद मैं सुनदा, पांच दस मुंडिया ने एक मुंडे नू रेल तो गिरा दिता मासूम नू, पांच दस बच्चियों की इज्जत लुटन की कोशिश की थी बिहार के नौजवानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, तो कहना पै गए भूत प्रेत ने कि बंदे ने मनुख ने। इन्ने गंदिया आत्मावां किसी गंदी मां दे राही आईया ने, यह भी मैं जिक्रा। एवें नहीं एशिया दे बैड़े पुत नू वेख के मां नू गाल कढ़ दे, मां नू गाल कढ़न दे पिछे एक बहुत वड्डी सच्चाई है। ऐसी भैड़ी आत्मा नू जन्म दिता, तेरी गोद इतनी गंदी, तेरी कुख इतनी मैली। खैर मुक्त सरस का गुरु रामदास जी का भी शब्द सामने है, जिदे आसरे ते मैं कह सकदा कि मैं गलत नहीं कह रहा। जिन हर हिरदे नाम ना वसियो, तिन मात कीजे हर बांझा तिन सुन्ने दे, फिरे बिन नावे ओ खप खप मोए करांजा। अवतारा नू जो जन्म देंदी है, अवतार करोड़ा च कोई एक आउंदा है, अवतार नू जन्म देण वाली मां भी कोई करोड़ा च एक आउंदी है। तिन जन जने दी मां आए सफल से। इतनी बड़ी लंबी मुद्दत तक मनुखता किसी परम पुरुख नू उड़ीक दी है। खैर इस स्वतंत्र आउंदे ने मुक्त रूहां, चूंकि धर्म का मूल ते दया है, संतुष्टि है। इन्हां आत्मावां कोले सूक्ष्म शरीर संतुष्टि है, दया है। एक दफा मैं फिर दौड़ा दें ताकि मजबून पकड़ दे चाह जाए। पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल बड़ा विकासशील मन ते है, तन नहीं है। इंज कह ले उदे कोल असवार ते बड़ा सियाणा है, फुरतीला है, पर उदे कोल घोड़ा ही कोई नहीं, वाहन ही नहीं है। इंज कह ले केवल मनुख है, इहदे कोल तन भी है, इहदे कोल मन भी है। इस तन की बड़ी महिमा, बड़े भाग मानुक तन पावा, बही परापत मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस देही दे राही ए मन तू गोबिंद तक पहुंच सकता है। ये देही इतनी महान है, इस देही को सिमरे देव, देवते तरस देने। देवते सूक्ष्म शरीर है, किसी भी तकनी महान होवे, देखनी महान होवे, जिन्हों कहने दिव दृष्टि, दिव दृष्टि देवतियां नू देखण दी दृष्टि, मनुखां नू देखण दी दृष्टि है। किसी को नहीं आउंदी विचारे कोल, जिन्हों असी नेत्रहीण अंधा कह देंदे आ, कोई गल दृष्टि साडे कोल है मनुखां नू वेखण दी, पर जिहदे कोल देवते नू देखण दी दृष्टि आउंदी है उहनू कहिंदे ने इहदे कोल दिव दृष्टि है, देवतियां नू देखण दी दृष्टि है। जद कहा जांदा है जिथे रामायण दी कथा होवे उथे हनुमान बैठा हुंदा है, इह ते अतकथनी है। हनुमान जैसे प्यारे भगत जो मुक्त नहीं हो सके होणगे, हनुमान ते मुक्त हो गया, ते जे नहीं मुक्त हो गया ते इहनू इतना वड्डा संत ते उहनू पूजण दी वी फिर की लोड़ है। नहीं, वह एक मुक्त आत्मा, उन्हों विचकार लियाण की लोड़ नहीं आती, पर लियांदे ने शायद इस वास्ते लोगों च राम की श्रद्धा वधाई है, पर थोड़ा जिहा सोच विचार करने वाले मनुख के अंदर ती श्रद्धा घटेगी वधेगी नहीं। जैसा प्यार हनुमान के अंदर से, इस तरह के प्यार रखने वाले का किधरे शरीर का अंत हो गया मन प्रभु तक ना पहुंच सकया तो ये देवते कहलांदे ने भटकदे ने। तो देवते सिखा च भी आउंदे ने, मुसलमाना च भी आउंदे ने, हिंदुआ च भी आउंदे ने, पारसी यहूदियां जैनियां बौद्धियां च भी आउंदे ने। भटकदियां होईयां ये रूहां देवते। तुसीं आखोगे मैं कहिंदा की पिया, एक बहुत प्रबल सच्चाई है जिसनों संसार विच उजागर बहुत घट किया गया, बहुत घट किया गया है ना। भरिया पिया है, खला कुछ भी नहीं है। कुछ मनुखां दे मंडल ने जमीन, कुछ देव मंडल ने देवते रहिंदे ने, फिर कुछ रूहानी मंडल ने मुक्त आत्मा लीन हो चुके परमात्मा च। और वो ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल ना को अटकावे, सब महरम ने कोई अटक नहीं, जिथे जान जा सकते जा सकते। इस तरह दियां आत्मावां जो मुक्त नहीं हो सकियां ते देवते ने, देवते तो मुराद ज्ञानी ने, दीवा जले होया पवित्र ने, जन्म ले सकन, उस तरह दी मां मिलेगी ते होएगा। जने हर किसी मां की गोद दे राही और जगत दे च नहीं आना चाहते, तो उतने दिन तक फिर किथे रहन? ए फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च रहिंदे ने, अपने अपने मजहब संस्कारां दे मुताबिक, अपने अपने धार्मिक केंद्रां दे च रहिंदे ने, सुनदे ने, आनंद लैंदे। मन उहनां कोल है, तन है नहीं, भुख प्यास लगती नहीं, भुख प्यास तन नूं लगती है, हवा तन नूं चाहीदी, ऑक्सीजन तन नूं चाहीदा है, सूक्ष्म शरीर नूं नहीं। चूंकि तन है नहीं तो तन की कोई भुख प्यास नहीं, तन की कोई लोड़ नहीं, पर सूक्ष्म शरीर की लोड़ तो है। कथा कीर्तन जप तप जाते उत्थे ही रहते। एक दूसरे ढांचे भी आते ने, बहुत मलीन, बड़ा कसाई, बड़ा दुष्ट, महान ठग, बड़ा कातल, यही करता रहा है। इहदी भी शरीर की मौत हो जाए, अगला जन्म छेती नहीं आता, भटकदा है। इन्हां नूं ही भूत प्रेत कहिंदे ने, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा च, शराबखानिया च, वैश्यालिया च, होर गलाजत भरिया जगह विच ये रूहां होंदियां ने। छोटी जी लड़ाई वड्डी लड़ाई का रूप धारण कर जाए तो समझ लेना है भूत प्रेत है कि नहीं। छोटा जिहा कुकरम वड्डे कुकरम का रूप धारण कर जाए तो समझ लेना भूतां ने मदद कर दी है, ये भी मर्ज करते हैं। छोटा जिहा नेक कम जे वड्डे कम विच प्रगट हो गया तो समझ लेना देव रूहां ने कुछ मदद की थी है। दूर क्यों जाओ? कबीर किथे गंगा दे तट ते बैठे 25 साधुआं नूं कह आए, शिवरात्रि दा दिन सी, अज दोपहर नूं भोजन साडे घर करना, सवेरे अमृत वेले कह कह दिता। उन्हां 25 साधुआं ने, 2-4 साधु जिहड़े उन्हां दे कोई होर मित्र सन बाहरों आए, उन्हां नूं कहा, गल फैल गई सारे बनारस विच, पहुंच गए 700-800 साधु। इन्नी भीड़ वेख के कबीर ते निकल गया। 25-30 आदमियों लई अन्न बनाया सी, इतना ही है, होर अचानक लिया सके बना सके इतनी बिसात नहीं सी, इतने को माया नहीं सी, की करे, शर्मसार निकल गया। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तू संभाल, मैनू नहीं पता, मैं शर्मसार नहीं होना चाहता। शामा पै गई हूं, सोचता जावा घर, पता नहीं उन्हां पंजियां नूं भी मिलिया कि नहीं जिन्हां नूं मैं कहा सी। बेइज्जती खूब होई होवेगी, मेरा मजाक अज खूब उड़ाया होना है कईयां ने। ज्यों आया ते घर दे बाहर पतलां दा ढेर, इंज लग्या जिवें बहुत सारे भोजन छक गए। होर नेड़े आए ते दो सज्जन लंघदे हुए कहिंदे ने, धन कबीर धन कबीर, ऐसा लंगर ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਕਵੀ ਧੰਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਸੰਤ ਚਿਤ ਲੋਈ ਮਿਲੀ ਪਤਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਰ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਾਇਓ ਕਬੀਰ ਕਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਭੈੜਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤੇ ਨਮਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਜੋ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਨਰਗਿਸ ਆਪਣੀ ਬੇਨੂਰੀ ਪੇ ਰੋਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਚਮਨ ਮੇ ਦੀਦਾਵਰ ਪੈਦਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਲੋਭ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦਇਆ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁਖਦ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੰਡੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਸ ਤਨਾਂ ਦਾ, ਦਸ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਢਾਈ ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸੰਤ। ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਨੇ। गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी, भगत जो भगवान तक पहुंच गए, प्रभु तक पहुंच गए, ये मुकुत ने, भगत ने, संत ने। सुरनर तिनकी बाणी गावे कोई न सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जांदा है ते उहदे अंदरों भगवान दा गीत संगीत निकलदा है, भागवत गीता निकलदी है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने, ये भी मर्ज करते हैं गीत ने। नानक भाव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, केड़े गीत जो भगतां दे गीत ने, अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त पुरुषां दे बोल ने, उन्हां दे बोल ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਕ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਗਣਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਛਿੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਭਗਤ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ। ਚਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਥੱਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਅਲਾਪ ਲਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, एक कदम अगे एक कदम पिछे। ये तादाद सब तो ज्यादा है, सब तो ज्यादा है। इस तादाद दे चां कुछ लोग धार्मिक किरत अपना लेंदे ने, कथा कीर्तन मौलवी बन गया, कोई फादर बन गया, कोई गुणी ज्ञानी बन गया, कोई पंडित महाराज बन गया। हुण परमात्मा नूं जाणिया ते है नहीं, जाणिया ते कख नहीं, जाणन दी कोशिश पे करदे, समझिया ते कुछ भी नहीं, समझाण दी कोशिश पे करदे, खुद नहीं समझिया। अपना ही मन जिस गल नूं नहीं मनदा पिया उही जगत नूं मनाना चाहुंदे ने। गुरु नानक कहिंदे ने खेड नहीं बनेगी, प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर ले जावे। ये खेड इंज नहीं बनेगी। ये तीजी श्रेणी है, श्रद्धा भी है, शक भी है, शक भी है, श्रद्धा भी है, इस वास्ते दान पुन भी है, बेईमानी भी है, सेवा भी है, कठोरता भी है, बाणी का जपतप भी है, झूठ बोलना भी है, अनर्थ भी है, श्रद्धा भी है, शक भी है। ये तीजी श्रेणी है। चौथी श्रेणी, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ऐ नहीं। ऐलानिया कहिंदे ने कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, साडा की गुरुद्वारे नाल मतलब। अजोके नौजवान कई मिलदे ने, मैं ते सुन के हैरान होना, मन अपना चंगा होना चाहिए, की लोड़ है गुरुद्वारे जाण दी। जिवें मन का चंगा होना बच्चों का खेल है, खिडौणिया की खेड है। दिन रात साधन करन वाले विचारे अपने मन नूं शुद्ध नहीं कर पाते। मन चंगा होना चाहिए जी, मन शुद्ध होना चाहिए। इस तों गल स्पष्ट हो गई, अजे इन्हां विचारियां नूं मन का नहीं पता, सिर्फ तन का ही पता। अजे सिर्फ तन की भज दौड़ है, अजे सिर्फ तन दियां लोड़ां की चिंता है, अजे इन्हां नूं मन का कुछ भी नहीं पता। जो इस तरह कह रहे हैं, जब कदी मन नूं देखणगे ते पता चलेगा असलियां समस्यावां ते मन दे च ने, चिंता ते मन दे च, भय ते मन दे च, विरोध ते मन दे च, प्रबल वासना ते मन दे च, प्रबल अहंकार ते मन दे च। ये मन मनुख कोल बड़े अनर्थ कराएगा, बहुत अनर्थ कराएगा। नास्तिक साडी कोई आस्था नहीं, साडा कोई भरोसा नहीं। अजोकी नौजवान पीढ़ी ते यही बहुत ज्यादा सवार है, ये भी मर्ज करा। और कम्युनिस्ट कहते ने, पता है की आखते, भोजन की लोड़ है, भजन की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ है, धर्म की लोड़ नहीं है, पानी चाहिए स्वच्छ, गुरबाणी नू की करना है, कम्युनिस्ट ऐलानिया कहते ने। और दलील देंदे ने, चार दिन पानी ना मिलिया पंजवें दिन मौत हो जाएगी। सारी जिंदगी भी मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो की होना है, की घटता है, कुछ भी नहीं घटता, इंज कहते। जेब दे च धन नहीं है तो जमीन ते चार कदम चलना औखा है, हिरदे दे च धर्म नहीं है सारी दुनिया भ्रमण करके आ जाओ, इंज कहते। पेट दे च भोजन नहीं है, जीवना बड़ा औखा है, काम करना बड़ा औखा है, जबान ने भजन नहीं किया की घट गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लमकावे ना समा हो गया, मैं अर्ज करा, भोजन ना मिलिया तन मरेगा, भजन ना किया जमीर मरेगी, इंसानियत मरेगी, मनुखता मरेगी। ये जीवेगा तो सही जीवदा तो रहेगा, पशुओं की तरह जीवेगा। करतूत पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। पानी ना मिलिया तन मरेगा, वाह कई मरेगा। गुरबाणी का जाप ना किया मनुखता मर जाएगी, आखा जीवां बिसरे मर, मनुखता मर जाती, इंसानियत मर जाती है, आनंद मर जाता है, रस मर जाता है, ज्ञान मर जाता है, निर्वैरता मर जाती है, दया मर जाती है, अंदर कठोरता रह जाती है। हो ही नहीं सकता ईश्वर नूं भुला के कोई कोमल हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई ईमानदार हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई परोपकारी हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई सुखी हो जाए, ऐसा ते हो ही नहीं सकता। सारे दुख उसनों चमणगे परमेश्वर ते उन्या व्यापन सबेर। एक चौथी श्रेणी लोड़ ही नहीं है, नास्तिक सड़ी कोई आस्था नहीं है। एक पंजवी श्रेणी इतनी बेखबर, ईश्वर ऐसा कोई विषय ही नहीं है, इसते शक कीता जाए या श्रद्धा कीती जाए, इदे बारे सोचिया जाए, इत कोई ऐसा विषय ही नहीं है। ये पंजवी श्रेणी है जिन्होंने भूल के कभी इस संबंध सोचिया भी नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया। ये पंज श्रेणियां हैं, तो खुद ब मुनसफ शुद्ध अपना मुनसफ आप बनना है, अपनी जजमेंट आप करनी है, असी किस श्रेणी चाहते हैं, असी कैदी क्लास के विद्यार्थी, किस क्लास ने, चूंकि फैसला हर मनुख ने आप करना है। दूजा की जाने, थानू की पता मेरा मन दिच की चलता रहा, मैनू की पता थोड़े मन दिच की चलता रहा। तो खुद ब मुनसफ शुद्ध अपना मुनसफ आप बनना, अपना फैसला आप करना, साहब रहमत करन। असी इस दूजी श्रेणी च आईए, धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोलों अपना के, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव को मना के, जिस तरह भाई गौंदे ते बख्शिशा होईयां, ए गुरु हर राय साहब अज साड़ियां भी झोलियां भरना तेरे दर तो खाली ना जाए, श्रद्धा नाल भर जाए साड़ी झोली, रब्बी विश्वास नाल भर जाए साड़ी तौली, जो शक शुभे अंदर ने, हे धन गुरु हर राय साहब इसनू कढ़ो, ऐसा भरोसा पैदा करो कि एकदम ख्याल आ जाए सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बाकी विचारा मैं थोड़े सामने आज शाम नू रखांगा, ये फैसला तुसी आप कर लेना जिस श्रेणी च हो। जिन्हें चिर तक इस दूजी श्रेणी च नहीं आए, मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, भगत नहीं बने, उन्ने चिर तक खेड नहीं बनेगी। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। भगत मुक्त हो जाता है, एक दिन तन का अंत हो जाता है, फिर इसकी मर्जी आती है मैं फिर जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि मुक्त है। तो जो मुक्त है दी मर्जी नहीं, वासना इसनों जन्म देवेगी, अरे भटकेगा हंकार इसनों बार बार जन्म देवेगा। हमें यही बंधना फिर फिर जोनी पाए, मुड़ मुड़ जोनिया भटकता रहेगा। साहेब रहमत करन, बख्शिश करन, प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुकत सो कहावे। असी जीवन मुकत बन के जीवन का लाहा खट सकीए, जीवन नु आनंदित बना सकीए, संसार दे आन दा मनोरथ जो है वो प्राप्त कर सकीए। इतनी सेवा प्रवान, सारे दा बार बार धन्यवाद। बोल चुगरी शमा, वाहिगुरु।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

संतपना की है। पैगंबर किसनों कहते ने, अवतार किसनों कहते ने, पूरन संत किसनों कहते ने, फकीरी चीस्त, ये सिर्फ दो शब्दों विच, दो बोलों विच इतना वड्डा सवाल। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है, संतपना की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नूं फकीरी कहिंदे। यही संतपना है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है, फकीर किसनों कहिंदे ने, संत किसनों।

रास्ते है धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीज़ फकीरी किसनों कहते ने, इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं कुर्बान कर देना, मिटा देना और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लैणी, बस इस नूं फकीरी कहिंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते। कहिंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा, जन्म जीवन मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा, जन्म जीवन मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिया है। जन्म कित्थे होया सी, मां बाप कौन सन, ए भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वाले ने इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सकिया उन्हां दे मां बाप कौन सन, जन्म कित्थे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति होई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली विच कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखिया। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाधि ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे च। करीबन करीबन 1.5-2 लाख बंदे कठे होंदे ने, पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचदे ने मिनिस्टर। फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष दा मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उसकी मौत कुछ दे गई, उसकी मौत जगत वासियां दी झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसकी मौत नूं लिया है, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया कट्ठी होंदी है। इतिहास दी कोई लंबा चौड़ा यह जिक्र नहीं कदों जमया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसे दा मरना इतना महान आउंदा है कि कलम दे धनिया नो, दिमाग दे धनिया नो, उन्हां दे ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण आउंदा है, चलो जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गए, शरीर गया। लेकिन जीवन महान होंदा, उन्हां दी जिंदगी कुछ दे जांदी है। तो फिर कलम दे धनी उन्हां दे जीवन बारे लिखते। संसार दे इतिहास दे हजारां साल उड़ीक करन तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लेंदी है जिदा जन्म भी क्रांति करता है।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਲਾਉਂਦਾ।

बेडर तोरा नीला चोला छे फुट जो साला शिके हाथ च तीर ते वांग गात्रे रखिया।

0: न जानी
1: बोध बोध जन हर रस राते
0: सुन समाध नाम रस माते
1: आठ पहर जन हर हर जपै
0: हर का भगत प्रकट नहीं छपै
1: हर की भक्त मुक्त बहु करे
0: नानक जन संग के ते तरे
1: बार जात ते हो हर को नाम
0: काम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा
1: नाम की महिमा संतरित बसै
0: संत प्रताप दुर्त सब नसै
1: संत का संग बट भागी पाई है
0: संत की सेवा नाम ते आई है
1: नाम तोल कश अवर न हो
0: नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक
1: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल
0: पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
0: शास्त्र सिमृत विज्ञान
1: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया
0: सकल त्याग बन मध्य फिरिया
1: अनेक प्रकार किए बहु जतना
0: पुण्य दान हूँ मैं बहु रतना
1: शरीर कटाई हूँ मैं कर राती
0: व्रत नेम करे बहु पाती
1: नहीं तो राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
1: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव है
0: महा उदास तपी सर थीव है
1: अगन माही हुमत पुराण
0: कनक हसब है भरपूर दान
1: न्योली कर्म करे बहु आसन
0: ज्ञान मार्ग संजमय साधन
1: निम्क निम्क कर शरीर कटावे
0: रावी हम बह मैल न जावे
1: हर के नाम सम सरकश नाही
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
1: मन कामना तीर्थ दे छुटै
0: गर्भ घुमान न मन ते हुटै
1: सोच करे दिन सर रात
0: मन की मैल न तन दे जात
1: इस देही को बहु साध न करे
0: मन ते कभु न बिखिया तरै
1: जल धोवे बहु देह अनीत
0: सत कहा होए काची भीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच
0: नानक नाम उदरे पतत बहमूच
1: बहुत सियाणप जमका भव व्यापै
0: अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापै
1: एक अनेक अगन नहीं बुझै
0: ओटो पावदर गैने सिजै
1: छूट सुनाही ऊब पयाल
0: मोहे व्यापै माया जाल
1: अवर करतूत सगली जम डानै
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै
1: हर का नाम जपत दुख जाए
0: नानक बोलै सहज सुभाए
1: चार पदार्थ जे को मांगै
0: सार जना की सेवा लागै
1: जे को अपना दुख मिटावै
0: हर हर नाम रिदा सदकावै
1: जे को अपनी शोभा लोरै
0: साध संगे हम मैं शोरै
1: जे को जन्म मरण ते डरै
0: साध जना की शरणी परै
1: जिस जन को प्रभु दर्स प्यासा
0: नानक ताकै बल बल जासा
1: सगल पुरख मैं पुरख प्रधान
0: साध संग जाका मिटे अपमान
1: आप सुको जो जाने नीचा
0: सहु गनिया सब ते ऊंचा
1: जाका मन होए सकल की रीना
0: हर हर नाम तिन कट कट चीना
1: मारे अपने ते बुरा मिटाना
0: इक्या सगल सृष्ट साजना
1: सुख दुख जन साम दृष्टेता
0: नानक पाप पुन नहीं लेपा
1: मेर धन को धन तेरो नाव
0: था मैं को नाव तेरा था
1: नमाने को प्रभ तेरो मान
0: सगल घटाको देवो दान
1: कर्म करावन हार स्वामी
0: सगल घटाके अंतर जामी
1: अपनी गतमत जानो आपे
0: आपन संग आप प्रभ राते
1: तुमरी उस्तत तुम ते
0: नानक अवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: साध संग दुर्मत मल हरिया
1: सगल उद्यम में उद्यम भला
0: हर का नाम जपो जी सदा
1: सगल बानी में अमृत पानी
0: हर को जसम रसन बखानी
1: सगल थान ते हो उत्तम थान
0: नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक
1: निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभु सदा समाल
0: जिन की तिस जीत रख नानक निभही ना अष्टपदी
1: रमैया के गुण चेत पुरानी
0: कवन मोहते कवन दृष्टानी
1: जिन तू साल सवार सिंगारिया
0: गर्भ अगन में जिने उबारिया
1: बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध
0: पर जो बन भोजन सुख सूद
1: बिरद पया ऊपर साख सैन
0: मुखे पया हो बैठ को दैन
1: एहो निर्गुण गुण पशु न बूझे
0: बख्श ले हो तो नानक सी जय
1: जय प्रसाद धर ऊपर सुख बस है
0: सुत प्रात नींद बनता संग हस है
1: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
0: सुखदाई पवन पावके अमुला
1: जय प्रसाद भोगे सब रसा
0: सगल समग्री संग साथ बसा
1: दीने हस पाम करन नेत्र रसना
0: इसे त्याग अवर संग रचना
1: ऐसे दोख मूड़ अंध व्यापे
0: नानक काट ले प्रभ व्यापे
1: आदि अंत जो रखन हार
0: ऐसे प्रीत न करे गवार
1: जाकी सेवा नव निध पावे
0: ऐसे मूड़ा मन नहीं लावे
1: जो ठाकुर सदा हजूरे
0: जाको अंधा जानत दूरे
1: जाकी टहल पावे दरगाह मान
0: तसे बसारे मुग्धा जान
1: सदा सदा इव भूलन हार
0: नानक रखन हार अपार
1: रतन त्याग कौटी संग रचे
0: साच छोड़ झूठ संग मचे
1: जो छड़ना सो अस्थिर कर माने
0: जो होवन सो दूर प्राण
1: छोड़ जाए तिस का श्रम करे
0: संग सहाय तिस पर हरे
1: चंदन लेप उतारे धोए
0: कर तप प्रीत भसम संग होए
1: अंध कूप में पतित बिकराल
0: नानक काट लियो प्रभु दयाल
1: सूत पशु की मांस जात
0: लोक बचारा करे दिन रात
1: बाहर भेख अंतर मल माया
0: शब्द नाहे कश करे छपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान इशनान
0: अंतर व्यापै लोप समान
1: अंतर अगन बाहर तन स्वाह
0: गल पात्र कैसे तरे अथा
1: जा कह अंतर बसे प्रभु आप
0: नानक ते जन सहर समाज
1: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
0: कर गए ओढ़ निभावे
1: कहां बुझारत बुझे डोरा
0: जिस कही तो समझे पूरा
1: कहां विष्णु पद गावे गोंग
0: जतन करे तो भी सुर भंग
1: कह पिंगल पर्वत पर भवन
0: नहीं होत उहा उस गवन
1: करतार करना मैं दीन बेनती करे
0: नानक तुम्हारी कृपा तरे
1: संग सहाई सो आवे न जीत
0: जो बराई ता स्यों प्रीत
1: बलुआ के गृह भीतर बसे

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਜੀ ਆਦਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਥਾਰ
0: ਇਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਬਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਖਤ ਨਿਸਤਰ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਡਾਕਟਰ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਸਾਜਿ ਬ੍ਰਹਮਾਨ ਲਿਹੁ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸਮਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰ
1: ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅਨਕ ਬੇਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
0: ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਨ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲ ਨਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇਵ ਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਕੋ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਕਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਭ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਇਸੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਓ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਹੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪਮਤ ਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਏ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ
0: ਰੱਬ ਬਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਥਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇ ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਭਜਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀ ਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸੈ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਰੱਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਬੇ ਸੱਚ नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत अमनहार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजनहार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: कर्ण करावन तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत ज्ञान ते समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिस ते उपजा ते समाहे समान
1: बस माही ले बस गडाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास मारै
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को दे वडाई
0: अपने सेवक को नाम पाई
1: अपने सेवक की आप पत रखे
0: ताकि कदमित कोई न लख
1: रब के सेवक को न पहुंचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रखे
0: भस्म कर लस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य वृथे जात
1: मारा न रखे अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: अमृते मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर नाही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोभत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाई
0: रब अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट लेहे
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पाव है
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाट
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर सेव की करे प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर
0: गुर बचनी हर नाम उचर
1: सतगुर सिख के बंधन काट
0: गुर का सिख बकार ते हट
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष्ट न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्व गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ
0: अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश भरम
1: सह सियान पलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: वर्षित चरण गत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लए मिलाए
1: देवाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत कने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस पर साधा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम भो दुख ते नासे
1: सत माही ठांड वरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निरपो होए बसे
0: सगल व्याध मानते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: हित पाई चूके भ्रम गमन
0: सुन नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चले बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमर नाम आधार,
1: अवर पाप स्वामी पसारो,
0: शरण कमल विद मैं उतार,
1: कर्म काम सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गह नाम हर वत,
1: एहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार कुंट उठता वही,
0: सो तन हर से वाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखत लाए,
1: सर्व निधान मैं हर नाम निधान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते आ बैठाए,
1: ताको विघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: औ बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यो रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मन वंचित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थिर रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंफ झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू लेहे आने,
0: भक्त बिना बहु डूबे सियाने,
1: भक्त की भगत करहु मन मीत,
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भय नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करहु व्यवहार,
0: हम सब दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाहे,
0: एक समझ एको मन आहे,
1: एक सके गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विसार एक ते भये,
0: एक आराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करिया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ में त्याव,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभु की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभु सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परी प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साधक संग,
1: परी सरन आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जप्या प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी भई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नसदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: पुन्नी सरदा सब पूरी,
0: रब रहे सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाये,
1: सोक्यों बिसरे जे भाव न भानै,
0: सोक्यों बिसरे जे किया जानै,
1: सोक्यों बिसरे जिन सब किछ दिया,
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अगन मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लखै,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काटै,
0: जनम जनम का टूटा गंढै,
1: गुर पूरै तत एह बुझाया,
0: रब अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरै नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भगती धन खुशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सकल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुण तास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर एही सुआव,
1: नेत्रों देख दर्श सुख होए,
0: मन बिकसै साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दीजै कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहिया सर्व समाए,
1: रब बख्शंद दीन दयाल,
0: भगत बछल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोबिंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आद पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बढ़ियाई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी सो बा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सो

क्रियामा दिखाई दे रही है, धार्मिक क्रिया है, धार्मिक नहीं है। कारण जब प्रभु की समझ नहीं ते गुरु की समझ नहीं तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होगा। प्रभु नू कहंदे ने ओ घर है, घर है। गुरु नू कहंदे ने ओ दर है, ते गुरबाणी कहंदी है दर घर की सोजी ना। बड़ी कीमती पंक्ति है, ना दर दा पता ना घर दा पता। सतगुर ए सवालिया फिकरा भी उच्चारण करदे ने, सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व संभाले। जिंदगी एवें कर्म कांड दे चना लंघ जाए, कुछ उद्यम करो, उपराले करो। असी अरदास दे चे शब्द जोड़े हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते। तेरे जिन्ना मिलिया तेरी याद चल पाए, जिन्ना दे संदड़िया मेरी दुरमत वंजे। मित्र असाजड़े से मुख्तसर में अर्ज करा, धार्मिक मंदिर बना लेना सेवा है। सेवा नाल बनते ने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदां। दान नाल, दान सेवा है। मेहनत नाल धन कमाया, धन दान दे दिता, सेवा है। दान सिमरन नहीं है, और दान नाल कोई मन निर्मल नहीं होता। अगर सिमरन ना होवे तो दानी महाहंकारी होता, दानी महा बेईमान होता, गुस्ताखी माँ है। बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है। बेईमानी करके धन कमाया, दानी बने होया। सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किसे नूं कहिंदे ने? दानी नूं। सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए। दानी पाप करके धन इकट्ठा करता है, फिर दान देता है, कहता मैं धार्मिक कर्म किया, हद हो गई। जिहड़ा तू कमाया ही पाप नालों दिता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया? गुरबाणी बहुत गहराई जाती, इतना ना समझ लेना। मैनू कई मिल पैंदे ने गैनी जी, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ किए ने। मैं कह तेरे चेहरे दे उत्ते ते एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती, एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती। तेरे व्यवहार दे उत्ते एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती। की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर लै? दान सेवा है। दो दानी लड़ पैंदे ने, दान दे नाल हंकार जांदा नहीं, कई दफा वध जांदा है, बड़ा भयंकर वध जांदा है। कुछ गल्लां सामने आईयां ने, मैं नहीं कह रहा, इस वास्ते संकोच करके वापस पिया करदा। सती पाप कर सत कमाए, बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजों होवे ना ही मोया साथ ना जाए। बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन इकट्ठा ही नहीं होता। फिर पाप का बोझ लाण वास्ते दान, महाराज कहिंदे ने किस तरह हो सकता है? जिहड़ा इकट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देण नाल पुन किस तरह हो गया? सती पाप कर सत कमा। खैर, धार्मिक इकट्ठ, धार्मिक सूझ बूझ नू पैदा करन वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस। इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करां, घर विच प्रवेश उसनों मिलदा जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे। पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है,
ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ।

के राज करीमा के कर्म करीमा के सर्वं कलिया के सर्वं दलिया के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दानिया के सर्वत्र गौनय के सर्वत्र पावनय के सर्वत्र देशा के सर्वत्र

साहेब खोई जी आल कृपा करे ता साई कार कराई सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम नहीं सी हुकम ने हवे प्रमाण तक खसमे का मिल पाए सी खसमे पावे सह करे मने चुंदिया सो फल पाए सी ता।

देख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणि जय कृपाउन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत सेवक कौ सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई तख्त बह तख्ते की लायक पंच समाए गुरमत पायक लाख खुशियां पातशाहियां जे

गुर ज्ञान दियो मन समझा जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात कीजै हर भांजा।

तो साध संगत जीओ, एक बार फिर तह दिल तो गुरद्वारा साध समुची मैनेजमेंट वालों सिंह साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस अस्थान के उपर एक महीना कथा द्वारा सेवा निभाई है।

0: सी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.
1: हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

संदेश देंदे हुए आखिर वापस पंडरपुर आए। पंडरपुर दे विच वी आप नाल ओही व्यवहार होया जो औंडे दे विच होया। क्यों कि पंडरपुर दे वसनीकां नूं भी पता सी कि आप जात दे छींबा ने और नवे कपड़िया नूं खुंभ ते चाड़ के धो के ते फिर उन्हां नूं रंगना ए नामदेव दी किरत सी, नामदेव दा धंधा सी। लेकिन भगती भाव दे गीत इस ढंग नाल चारों पासे खिलेरे कि पंडरपुर दे वसनीक आप दी परिक्रमा करन लगे, भुल गए कि ए शूद्र है। आखिर तार्किक पुरोहित लोगां ने, विद्वाना ने आप तो पुछया कि तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल किवें जोड़े, की युक्ति है, की युक्ति है, आखिर ढंग की वरते है, तौर तरीका की वरते है। तौर तरीका कबीर तो भी किसी वक्त पूछा गया सी, ता आपने साफ कह दिता सी, तज भरम करम बिद निखेद राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर सने। बिद निखेद, बिदि निषेध, कोई बिदि नहीं है, कोई ढंग नहीं है, कबीर कहते हैं कोई ढंग नहीं है। भरे आया ठंडा पानी दा गिलास मनुख दे अगों रख रही है ते ओ पीण दा ढंग पुछे, विधि विधान पुछे कि पीण दा ढंग की है, विधि की है, तो गल स्पष्ट हो गई कि इस बंदे नू प्यास नहीं लगी। 36 प्रकार दा भोजन परोस के किसे मनुख दे अगों रख दई है ते ओ ए आखे कि छकण दा ढंग की है, भोजन करन दा ढंग की है, ते गल स्पष्ट हो गई इसनू भुख नहीं लगी। भूखे खावत लाज ना आवे, भुखा मनुख ढंग नहीं पुछदा हुंदा, तौर तरीका नहीं पुछदा हुंदा, ओ छकण लग पैंदा है, खान लग पैंदा है। ढंग तौर तरीके दा पुछना ही इस गल दा सबूत है कि इसनू भुख नहीं लगी। श्री नामदेव जी महाराज तो ए पुछ कीती गई, ढंग की है, तौर तरीका की है। कबीर कहिंदे जद मनुख दे अंदर सतसंग करदे आ प्यास पैदा होती है, भुख पैदा होती है, ते भुख पैदा होंदे ही ओ ईश्वर दे गीत अलापन लग पैंदा है, ओ ईश्वर दा नाम उचारण करन लग पैंदा है। जैसे भुख लगे ते बच्चा रोण लग पैंदा है, सतसंग दे च बैठदियां बैठदियां जद सत दी भुख पैदा होंदी है ते रसना अपने आप ही सतनाम उचारण करन लग पैंदी है। तरीका आपदे कोल पुछया गया, दसो नाम देव तुसी अपना हिरदा परमात्मा नाल किवें जोड़े। आखिर एक नियम है कि दोहां नूं जोड़न लई तीसरे दी लोड़ पैंदी है। दो इट्टां नूं जोड़ना है गारा चाहिदा है, दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिदी है, दो कपड़िया नूं जोड़ना है सुई धागा चाहिदा है, दो लकड़ां नूं जोड़ना है सरेश चाहिदी है। तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल जोड़िया किवें जोड़िया, तो आप दा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च बड़ा कीमती वाक है कि सोए ने की सोई रुपे का धागा नामे का चित हर सों लागा। नामदेव ने अपना चित हरि नाल जोड़ लिया, किवें जोड़िया, किस तरह जोड़िया, सुई धागे नाल सी लिया। सुई केड़ी सोने दी, तागा केड़ा चांदी दा, सोईने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हर सौ लागा। सोने दी सुई की है गुरु दा शब्द, गुरु दा मंत्र, गुरमन मंत्र, ए सोने दी सुई है। तागा की है उहदे च ध्यान जोड़ना, उहदे च सुरत जोड़नी, ए तागा है। जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु दा उचारण करिए इते सोने दी सोई है, पर इहदे च ध्यान जोड़िए इह धागा है, ते ध्यान दे नाल ही मनुख सुन सकेगा, उंज सुन भी नहीं सकेगा। जैसे कि एक उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है, दूसरा सुन रहा हुंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह दिंदा मित्रा ए गल फिर आखो, नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। तो ध्यान धागा है, इसनु गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरुमुख अकथ कहानी। तो गुरु दा जो मंत्र है
ਇਹ ਸੋਇਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈ ਸੂਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਧਾਗਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਦਾ ਗਿਆ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਆਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੂਈ ਤੇ ਹੈ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨ ਧਾਗੇ ਬਿਨ ਸੂਈ ਆਨੀ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਈ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇਗੀ ਤੋ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੂਈ ਦੇ ਚ ਧਾਗਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰੋਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦ ਸੂਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿੱਤ ਹਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਚਿੱਤੇ ਚਿੱਤ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਅਥਾਹ ਰੰਗ ਬਣੇਗਾ ਅਥਾਹ ਸੁਖ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਸੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਐਸਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੁਆਪਣ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਆਪਣ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਜੈਸੇ ਉਸ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਆਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮ ਸੁਆਪਣ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤ ਕਾ ਚਿੱਤ ਅਨੂਪ ਸੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਈ ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਣਈ ਚਿੱਤੇ ਚਿੱਤ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ ਹਰਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਘਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਨਾਦ ਹੈ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਣਮਣੀਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਘਨਹਰ ਗਾਜੇ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸੁਰ ਦੇ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਤਾਲ ਦੇ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਅਣਮੜੀਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿਰਮੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਔਰ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਪਰਮ ਰਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸੁਆਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਨੇ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਸੁੰਦਰਮ ਉਹ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤ ਹੈ ਸੁਹਾਣ ਉਹ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਖਿੜਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਆਪਣ ਹੈ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਸੁਆਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣਮੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੋਹੇ ਬੱਤੀ ਲੱਖਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਅਗਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ 32 ਲੱਖਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਪਰ ਦੈਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
दैवी गुणा दा जो स्वपन है ए बंदे कुल ना होवे तो 32 लक्षण भी किसे काम दे रहे। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना सब कुबज करूप। पावे कितना ही सुंदर होवे, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। तो नामदेव जी महाराज कहंदे ने मेरे अंदर परम स्वपन पैदा होया और परम आनंद पैदा होया, ते परम संगीत दियां धुनियां मेरे अंदर पैदा हो गईयां ने। नाद वज रहा है, अणमण या मंदल बाजे, बिन सावन घन हर गाजे। बिना सावन तो मेरे अंदर बदल गरजदे पए ने। कबीर अंबर घन हर छाया, बरख बरे सरताल, चात्रिक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवाल। गुरु रूपी बदल मेरे अंदर गरज रहा है, परमात्मा दा गर्जन शुरू है और अमृत नाम दी बरखा मेरे हृदय ते हो रही है। परम संगीत परम नाद मेरे अंदर छिड़िया होया और इत्थों गल स्पष्ट हो गई, प्रभु नाल जुड़ना परम संगीत नाल जुड़ना है, परम हरियावल नाल जुड़ना है, परम आनंद नाल जुड़ना है, परम स्वपन नाल जुड़ना है। श्री नामदेव जी महाराज दे अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह दे मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा। पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वह मनुष्य ही नहीं है, वह पशु है। पशु इन्हां दोहां थलां तो थले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उस नूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनूं झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर। पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुन दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे च ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई
औखा हो जाता है। विचारक अपने विचारां दे ही कई दफा उलझ के जो है रह जाता है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिर कितना भी खपिए कितना भी विचारीए ता भी विचारदिया विचारदिया पता चलता है कि जिथों असी शुरू हुई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अगे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडी बौद्धक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बिया नू जन्म देवे, श्रद्धा नू जन्म देवे, विश्वास नू जन्म देवे, भावना नू जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलफे, त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज, जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे, ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, श्रद्धा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पणी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता, भावना दी अधिकता, श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जांदा, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जांदा। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ी है, श्रद्धा जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है, तां फिर रस दी गंगा वग तुरदी है। और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है, श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, बौद्धक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां विच जीवदा है। हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया, बौद्धक तल ते जीवण वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिदे ने कि बौद्धक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने, बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है, श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है, वरतों करदा है। और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जांदी है, इस तरीके नाल ओ प्रेम भी धुंधला ते मैला होंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च, ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद श्रद्धा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है, उदों रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जांदा है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं, बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं, उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है, उन्हां दे वर्तन वाले वे विच विचार ने। ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨੁਭਵ ਭਾਵ ਨ ਤਰਸੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਰਿੰਡ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਨਹਿ ਪਰਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਔਰ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੀਤ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਕ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਦੇ ਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਗਰ ਦੇ ਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ ਦੇ ਚ ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਖੂਬ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਮੈਂਢਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਕਛੂਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇੰਜ ਫੁੱਟਿਆ, ਆ ਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਠਾਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੀਠਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਠਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਠਲ ਮੰਦਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, 21 ਲੱਖ ਥਲ ਜੰਤੂ ਨੇ ਔਰ 21 ਲੱਖ ਨਭ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी देच है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी देच है, जन्म पानी देच है, मरण पानी देच है, ए पानी पवित्र नहीं हो सकता, ए ते अपवित्र है। हे प्रभु, मैं इस जल दा तेनु इशनान नहीं कराना, खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा। पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल दी उम्र देच, छोटे ने बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नू समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है, पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं, ये जल ते अपवित्र है, ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जी टोकरी लेके आप बगिया विच गए, फुल तोड़न लगे ने ते फुलां दे उत्ते मंडला रहे ने भौरे तितलियां। आप देखदे आई एकदम हैरान होए कि शहद दियां मक्खियां भी फुलां दे चों रस कढ रहीआं ने। आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने, पवित्र नहीं ने, इन्हां दा रस ते भौरे लै जांदे ने, इन्हां दे चों रस ते शहद दियां मक्खियां कढ के लै जांदियां ने, तितलियां कढ के लै जांदियां ने। लिहाजा इन्हां फुलां दी माला परो के हे ठाकर मैं तेरे गले किस तरह पावां जदके इन्हां फुलां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लैंदे ने, तितलियां पहले ही कर लैंदियां ने, शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लैंदियां ने। आ नीले फूल परोई ले माला ठाकर की हो पूज करो, पर पहले बास लई है भौरे बीठल भेला काहे करो। हु बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है। माई गोविंद पूजा कहां ले चराओ, अवर न फूल अनूप न पाओ, दूध ता बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तेनु इशनान करावा, ओ ते जल अपवित्र कर दिता मीन ने, फूल ते अपवित्र कर दिते ने, भौरिया ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नू ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी कपिला गऊ दा दुध ठाकरा नू पिलाना, तो अपनी माता नू आख्या गऊ चो दिओ दुध चाहिदा है। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया, बछड़ा थन चुंगन लग पिया, ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नू कहंदे ने पहले ए बछड़ा दुध पिएगा। हां मेरे बच्चे, पहले बछड़ा दुध पिएगा ता ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहन लगे मां मैनू ये दुध नहीं चाहिदा, इस दुध दा भोग मैं ठाकरा नू नहीं लवाना। क्यों? आ नीले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बितारियो बछरे बीठल भेला काहे करो। हे बीठल दस मैं की करा, ए दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें पवित्र कर देता है। थना देच दूध ता बछरे थनो बिटा रहे हो, भगत रविदास जी महाराज कहंदे ने आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बिटा रहे हो बछरे बिठल भेला काहे करो। ए बिठल दस मैं की करा, दूध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले, ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी, पर ते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थना देच ही झूठा कर गया, तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दुध नहीं रखिया गया, दुध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने सोच देच पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां देच आप पए ने ते आप दे अंदरों अमर धुनि इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनू इशनान करावा ता तू मच्छी हो के पहले आप ही जल दे इशनान कर रहे हैं, मैं तेनू की इशनान करावा।
हे प्रभु, जद मैं तेनु सोचया, तेरे बारे सोचया कि इशनान करावा, ता ए भी विचार पैदा होए कि इशनान ते उसनु कराया जांदा है जो मैला हो जाए। क्या तू मैला हो जाना है? साहिब कहंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम मैले तुम ओजल करते, हम निर्गुण तू दाता, तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने हैं। सड़ा तन मैला, सड़ा मन मैला, हे प्रभु तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, इशनान ते मैं तेनु तां करावां कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं। और तेनु की इशनान करावां, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनु की इशनान करावां। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया, हे प्रभु जल विच तू, मच्छी विच तू, तू ते व्यापक है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थन अंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना, आप ही भोग ला लेना, गऊ तू, बछड़ा तू, दुध तू, तू ही तू है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थन अंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नू, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे ने, मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इस नू श्री नंद लाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक ए बुत, जाहिद फिदाए खानकाह, हर कु जा जामे मुहब्बत, दीदायम सरशार अस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा है तेनू खानकाह दे चों, पर हर कुजा जा ने मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वह मंदिर है, चाहे वह मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेव्या, ना देहोरा ना मसीद, तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद दे च नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहंदे ने, सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मेरा राम घट घट दे च बोल रहे है। और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है पशुआं दे च, राम ही बोल रहा है पक्षियां दे च, राम ही बोल रहा है मनुखां दे च, राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां दे च, राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन दे च, बदलां दे गर्जन दे च। और सागर दी गर्जन दे च ही नहीं, प्रभु बोल रहा है कोयल दी कू दे च, बुलबुलां दे चहचहाण दे च। हे प्रभु तू ही ते बोल रहा है, सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, हे प्रभु तू ही बोल रहा है, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज, उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंचीए ते उस नूं किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखिरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा।
श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए, मार्ग की है, आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहिंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनदा है ते मच्छी दे चलदिया ही सागर विच मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जांदा है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जद शुरू कर जांदा है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जांदा है, बना बनाया मार्ग नहीं है। इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी, पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जद चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखदे हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल दे च ऐसा है, वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं, इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनू खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने, गुरुमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरुमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है ओ परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनदा है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। इस तरह गुरु का सिख जद जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है, राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल दे चलीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीता दे राही जगत नू बिठल दे चलीन करदे रहे, राम दे चलीन करदे रहे और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नू आपने राम दे चलीन कीता, बिठल दे चलीन कीता और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे चलीन हो गए, उस प्रभु देच लीन हो गए। और लीनता ऐसी होई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581 1900।

अनेकता बिलाए जाती होवत कुचीलता कतेबन कुरान के। पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते बरन गरक जाते सहत विधान के। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते रीत मित जाति कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गण गोविंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पे करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना होती गीता पुराण वेद खत्म हो जाने सन केवल कुरान रहनी सी। जनेऊ तिलक मंदिर ठाकर द्वारे खत्म हो जाने सन एक कोई मस्जिद रहनी सी। इति धन गुरु गोविंद सिंह जी की करामात उन्हां दी मेहरबानी उन्हां दी कुर्बानी उन्हां दी तपस्या उन्हां दी देन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि नूं नहीं देखिया गया क्योंकि असी सुनाया नहीं असी समझाया नहीं। साहिब कहिंदे कहूं जच्छ गंधर्व उरग कहूं विद्यादल कहूं भय किनर पिसाच कहूं प्रेत हो। हे प्रभु किधरे तू महाकविए किधरे तू महासंगीतकार। बहुत बड़ा संगीतकार वही गल जो गुरु नानक कहते हैं गुरु गोविंद सिंह। पर हे प्रभु किधरे तू भूत प्रेत है पिशाच है शरीर ही तेरे को नहीं रूह भटकती पई। कहूं जच्छ गंधर्व उरग कहूं विद्यादर कहूं भय किनर पिशाच कहूं प्रेत हो। काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जप्यो काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु किधरे तू हिंदू है तू ही है और कोई नहीं है तू ही है। गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है। पर हे प्रभु किधरे तू मुल्ला है तुरक है मुनारे ती चढ़ के बांग पिया देना। गुफा देच बैठ के मंत्रां दा जप करन वाले हे प्रभु तू ही है मुनारे ते चढ़ के बांग देन वाले हे प्रभु तू ही है। कहूं को बकाब होए पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो। कहूं बेदरीत कहूं तांसं विपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। हे प्रभु मैं देखदा किधरे तू पुराणा दा पंडित है बड़ा ज्ञानी है बड़ा ज्ञाता है पर किधरे तू कुरान दा हाफिज है तू ही है और कुछ नहीं तू ही है। इना सवैया दी लड़ी वार जे मैं व्याख्या की समा अपने ढंग नाल चला जांदा है। एक सवैया होर रखदे हां थोड़े सामने कवित कहूं गीत के गवैया द्वापर दे चली गई बिरती धन गुरु गोविंद सिंह। कहूं गीत के गवैया कहूं बेन के बजैया हे प्रभु किधरे तू मधुर गीत गाना है ते मुरली बजाना बांसुरी बजाना। धन गुरु गोविंद सिंह कहूं गीत के गवैया कहूं बेन के बजैया कहूं नृत के नचैया कहूं नर को आकार। किधरे आकार तेरा पुरुष दा बड़ा सोना नृतकार है बांसुरी बजा रहे हैं गीत गा रहे हैं नृत कर रहे हैं। कहूं बेदबानी कहूं कोक की कहानी कहूं राजा कहूं रानी कहूं नार के प्रकार। पर हे प्रभु किधरे तू नारी दी तरह नर दी तरह नहीं है स्त्री दी तरह पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे बेदबानी विद्या नाल भरी हुई ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दियां कहानियां तू कर रहे हैं पर किधरे कोक की कहानी। आपदी ज्ञातली अर्ज करा कोका पंडित ने काम सूत्र एक ग्रंथ लिखे उस वक्त दे कुछ नैतिक पुरुषा ने सैने पुरुषा ने कहा सी तू की लिख रहे हैं तू ऋषि है तू संत है काम ते लिख रहे हैं। उन्हें आख्या जे क्रोध ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है हंकार ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है लोभ ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है मोह ते लिखिया भी जा सकता है ते बोलिया जा सकता है काम ते क्यों नहीं लिखिया जा सकता ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता दलील से। आखिर जद भी किधरे मनुख गिरदा है तो ना पंजा करके ही गिरदा है और जिस करके ज्यादा गिरदा है अधिक गिरदा है उदी जानकारी मनुख नु होनी चाहिए। उन्हें इतना वड्डा ग्रंथ लिखिया काम

एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान ज्यों तिस भावे तिवें चलावे ज्यों होवे फुरमान।

ब्रह्मा विष्ण ते महेश जो प्रमाणिक ने 33 करोड़ देवते दिच ए तीन प्रमाणिक ने सिरमौर ने ते साहिब कहिंदे ने एक नूं संसारी होण दा लकब दे दिता गया। संसारी होण तो मुराद सिर्फ संसार दी रचना ही कीती, जो रचयिता है पालनहार नहीं है। इस ढंग नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि च तिने ही अधूरे हो जांदे ने, क्योंकि जो रचना कर सकदा है वह पालना नहीं कर सकदा, जो पालना कर रहा है वह मौत नहीं कर सकदा, और जो मौत कर रहा है वह सिरजना नहीं कर सकदा। ए तीन एक एक शक्ति साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने नहीं, हकीकत यह है जितों उत्पत्ति हो रही है पालना भी उस तो हो रही है, और जिस तो पालना हो रही है नाश भी उस तो हो रहा है। पर जे इत्थे सवाल खड़ा हो जाए कि जिस तो उत्पत्ति हो रही है मौत भी उस तो हो रही है, गल समझ विच नहीं आउंदी, क्योंकि जिहड़ा बनाएगा वह मिटाएगा क्यों, और जिन्हें मिटाना ही है वह पालना क्यों करेगा। तो इहदे वास्ते गुरबाणी का एक बड़ा सुंदर जवाब है कि यह परमात्मा का कोई मुद्दा ते मकसद नहीं है, उसका एक खेल है। शौक दे नाल दरिया दे कंडे ते बच्चे अपने घर बनांदे ने, और जितनी शौक नाल बनांदे ने, जितने हसके बनांदे ने, उतनी हसके तोड़ देंदे ने। बनाण लग्यां जो हासा मौजूद है, तोड़ लग्यां भी वो खिलखिलाहट मौजूद है। जिहड़ी प्रसन्नता बनाण लग्यां है, तोड़न लग्यां भी वही प्रसन्नता है, और जितनी लगन ते मेहनत दे नाल बनाया है उतने ही चाओ मल्हार ते लगन नाल तोड़ देता है। क्या प्रयोजन है इस बच्चे का? अगर प्रयोजन होंदा, कुछ मुद्दा होंदा, मकसद होंदा, तो तोड़न लग्या इसने रोना सी, तड़पना सी, बेजार होना सी, नहीं ये उसका खेल है। तो साहब कहिंदे आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। जगत विच आवना ते जावना परमात्मा दा एक खेल है, मकसद नहीं। जिस काम दे पिछे कुछ मकसद रख लईए उत्थे तनाव खड़ा हो जांदा है। क्यों? तनाव इस गल दा खड़ा हो जांदा है हुण मकसद दी पूर्ति होवेगी कि नहीं, क्योंकि मकसद रखिआ। ते जिसने जिस काम दे लई कुछ मकसद रखिआ इहदा मतलब उसने किधरे पहुंचना है, ते किधरे पहुंचना इस गल दा सबूत है जे रस्ते च है, अजे मंजिले मकसूद ते नहीं। ते परमात्मा दा भी कोई मकसद है, उसने भी किधरे पहुंचना है, यह ते फिर अधूरा हो गया, यह ते फिर अपने घर दे च नहीं है। अगर उसने भी कोई मुद्दा रखे है, मकसद रखे है, स्पष्ट गल है। जैसे जैसे मनुख जिस काम दे नाल मकसद जोड़दा है तनाव ते खड़ा हो जांदा है, हुण मकसद की पूर्ति होवे ताई मैनू सफलता मिलेगी, ताई मैं अगे वध सकांगा। ते जे मकसद की पूर्ति ना होवे ते मायूसी आउंदी है, उपरामता आउंदी है, और अजे मकसद दूर है, अजे प्रयोजन दूर है, मुद्दा मंजिल दूर है, लेकिन तनाव पहले ही खड़ा हो जांदा है कि सफलता मिलेगी कि नहीं, मैं पहुंच सकांगा कि नहीं, मेरा पहुंचना ही मेरी सफलता है। ते जे परमात्मा दा इह सब कुछ करना भी किधरे पहुंचना है, तो इतनी गल स्पष्ट होगी परमात्मा कोल अजे सफलता नहीं है, और वह भी दुबदा च पे है कि मैं सफल होवांगा कि नहीं। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी कहिंदे नहीं, जगत दी रचना दे संबंध च उसका कोई मकसद नहीं, उसका कोई मुद्दा नहीं, यह उसकी एक लीला है, यह उसका एक खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। मुद्दा नहीं है उसका, कोई मकसद नहीं है, लेकिन बनाई जा रहा है। इस वास्ते परमात्मा की दुनिया तनाव नहीं है, खिचाव नहीं है, वो जिथे है अपने टिकाने ते, वो जिथे है प्रसन्न है, आनंद है, खुशी दे च है, खेड़े दे च है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह बड़ा मधुर कलाम कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये जगत एक तमाशा है, ते मैं इस तमाशे नू वेखन वास्ते आया। दरअसल जो तमाशा वेखदा है वह ते प्रसन्न रहिंदा है, पर जो तमाशा बन जांदा है वह लोकां दी नजरां च गिर जांदा है, दुखी हो जांदा है,

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगता सी पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन बुककीपिंग होवे या किसे भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।

0: तेजे सब्जी भले खाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
4: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस हिसाब किताब भी बहुत औखा है पहला मेनू भी यही लगता सी पर जदो मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरा बारे पता लगा ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया जिन्हां नू है 30 साल तो भी वद्दा तजुर्बा टैक्स पेपर फिल करने होन बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे ता आज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरा नू कॉल 604-325-8370 604-325-8370
5: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ

0: से पहले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते।